केपीअ में गवर्नर राज ऐं एमरजेंसीअ वारे मामले जी अॼु क़ौमी असेंबलीअ मां मंज़ूरी वरिती वेंदी। गवर्नर राज जो फ़ैसिलो मजबूरीअ में वरितो, ॿियो को ऑप्शन न हो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त केपीअ में कारकर्दगी ॾेखारण बिना को ऑप्शन न आहे। केपीअ में गवर्नर राज जी मंज़ूरी रहिया पार्लियामेंट जो गॾियल फ़ैसिलो इजलास ख़मीस ॾींहुं तलब करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इजलास बाबति समरी सदर ॾांहुं मोकिली आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त ख़मीस ॾींहुं थींदड़ इजलास मां केपीअ में गवर्नर राज जी मंज़ूरी वरिती वेंदी।

2018 में मुल्क मां दहशतगर्दीअ जो ख़ात्मो करे छॾियो हो। पीटीआई जी हुकूमत ॿीहर केपीअ में दहशतगर्दनि खे आबाद कयो। पार्लियामेंटी पार्टी खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त अमन लाइ सियासतदाननि वॾियूं क़ुर्बानी ॾिनियूं आहिनि। कुझु महीननि खां केपीअ जी सूरतहालनि ताईं ख़राब हुई। केपीअ जे अवाम सदाई पाकिस्तान लाइ क़ुर्बानी ॾिनियूं आहिनि। मौजूदा हुकूमत बि दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे।

सिराड़ीअ वेझो रेलवे लाइन ते शहदादपुर जे डीएसपी मीर मोहम्मद मंगरियो जे नौजवान पुट जो टुकड़ा थियल लाश हथ। लाश जा टुकड़ा हिकु कपड़े में विझी एम्बुलेंस ज़रिए पीपल्स मेडिकल अस्पताल नवाब शांत आया। पुलिस जो चवण आहे त नौजवान वसीम मंगरियो जे लाश जा टुकड़ा ट्रेन हादसे में थिया आहिनि। खुदकशी आहे या को बि॒यो वाकियो पेश आयो आहे, इन बाबति जांच करण खां पोइ ख़बर पइजी सघिजे थी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के लियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नार्म सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक। बस पोइ हाणे खणो फोन
6: ऐं मैनेजर यूनस बकारी सां
5: 03132578-6।
6: जी हा, 03135-5786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: ये जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई जदीद माइक्रोबीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करें दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: डैमेज ए डस किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह

0: ॾह खां राति जो ॾह बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड ऐं नॉर्मल डिलीवरी थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका में जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBB डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदा। हू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86313।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदी, निज़ाम सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जेकरे तवा के मैदे जी तकलीफ, सीने जी जलन, खट्टी उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थण जी जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाए आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-1287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: ज़िले वाशिक में कार्रवाई दौरान पंज दहशतगर्द मारजी विया. मारजी वियल दहशतगर्दनि जे थाकनि खे जदीद हथियारनि सां निशानो बणायो वियो. केपीअ में गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी वारे मामले जी अॼु ॿिन्ही ऐवाननि मां मंज़ूरी वरिती वेंदी. क़ौमी असेंबली जो इजलास अॼु सुबुह 11 वॻे थी रहियो आहे ऐं सेनेट जो इजलास शाम 4 वॻे थींदो. ॿिन्ही ऐवाननि में केपीअ में एमरजेंसीअ जी मंज़ूरीअ बाबति ठहराउ पेश थींदा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मक्का डिफेंस अलायंस जे पहिरें सेक्रेटरी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद रिटायर जी मुलाक़ात. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे जाइज़ हक़ जी मुकमल हिमायत करे थो. मक्का दिफ़ाई मुआदे ज़रिए पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारी दिफ़ा ऐं इलाइक़ी सलामतीअ सां गॾु आहे. सेक्रेटरी जनरल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे मक्का दिफ़ाई मुआदे जे दिफ़ाई ऐं ॿियनि मामलनि जे हिकमत अमली बाबति आगाही ॾिनी. सऊदीअ जे शहर ज़ोरान में आयल कंपनी आरामको जे हेडक्वार्टर भरिसां धमाको. सऊदी ताज ज़ोरान में मीज़ाइल हमिलो नाकाम बणाए छॾियो. तर्जुमान मूजिबि मीज़ाइल जो मलबो शहरी इलाइक़े में किरियो आहे, जंहिं सबबि 15 घरनि खे नुक़सान पहुतो आहे. सऊदी तादी फोर्सिस पारां हुसन ख़िलाफ़ स्पेशल ऑपरेशन शुरू करण जो ऐलान.

बख्शा पर भरसा औरत जो पुरसरार नमूने घर मां लाश हथ कतल जा चोबोल गोठ फौजली मज़ारीअ में बशीरा मज़ारीअ जो लाश मिलियो इलाइक़े में चोबोल आहिनि त औरत खे कार ऐं इल्ज़ाम मड़े क़तल कयो वियो आहे। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। सिराणी भरसां रेलवे लाइन ते शहदादपुर जे डीएसपी मीर मोहम्मद मंगरे जे नौजवान पुट जो टुकड़ा थियल लाश हथ लाश जा टुकड़ा हिकु कपड़े में विझी एम्बुलेंस ज़रिए पीपल्स मेडिकल इस्पताल नवाब शांदा विया। पुलिस जो चवण आहे त नौजवान वसीम मंगरे जे लाश जा टुकड़ा ट्रेन हादसे में थिया आहिनि, खुदकशी आहे या को ॿियो वाकियो पेश आयो आहे। इन बाबति जांच करण खां पोइ ख़बर पइजी सघी।

छोकरनि रो आदमबस सां फुरमज़मत दौरान फायरिंग, हिक फोरू मारजी वियो, ॿियो ज़ख़्मी। झोल रोड ते ॻोठ ख़लील माकुराणी में गते जे फैक्ट्रीअ में फुर जी वारदात थी। फैक्ट्रीअ जे मुलाज़िम जो चवण आहे त मज़मत फोरू पंहिंजे ई साथीअ जे फायरिंग में मारजी वियो। ऐं रहमान बाबा एक्सप्रेस सां पेश आयल हादसे बाबति रिपोर्ट जारी कई वई। शुरूआती रिपोर्ट मूजिबि हादसो फनी ख़राबीअ सबबि पेश आयो। लीकेज कोजो साइड हिंग टुटण सबबि रहमान बाबा एक्सप्रेस हादसे जो शिकार थी। गुज़िरियल ॾींहुं कराचीअ खां पिशावर वेंदड़ रहमान बाबा एक्सप्रेस मुल्तान में हादसे जो शिकार थी, जंहिं सबबि 7 ॼणा फोत थिया, 40 खां वधीक ज़ख़्मी थिया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-2।
12: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
7: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असा वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
13: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
9: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
14: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
14: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125257 86।
14: जी हा, 2315 7586
9: GAFM रेडियो।

चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत ही पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम, यू आर सुनिंग इंटरव्यू रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज रुखसार सिंह की आवाज। सरियों कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, क्योंकि आप सुनेंगे पूरे पूरे एक बजे तक। और इसके अलावा वो तमाम तो लोग जो इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शे में है, कार में है, बाइक में है, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बेटर लक देन एवर, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफर्स लिए खुदा खैरियत मौजूद और दुआ के लिए खुदा खैरियत मतलब।

कुछ लोग यह सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे सैटरडे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरी बरसतारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आयानु सब बिस्मिल्लाह बोंजोर शामी हा एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुजार है. प्रोग्राम में बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को वो सारी बातें करेंगे आपसे जो आप हमसे करना चाहते हैं. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना और इस गाने के साथ आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे क्या होगा. स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुजार है.

आगे जो प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से, आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलती है। लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि आज आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो हर वेनसडे वाला जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए जो वेनसडे वाला शो है उसकी पोस्ट अपडेट हुआ करेगी फेसबुक के ऊपर, जहां पे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488। और इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं एक और गाने की तरफ, और इस गाने के साथ हम कहां जाएंगे, इस गाने के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे नै, खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिसमे आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, आई चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिल बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम आई ब्राइट, उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती, हर हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग सॉन्ग के साथ साथ हमें मैसेज किया है अमजद अली खोकर ने। अमजद अली खोकर सोनहारी फ्रॉम सोनहारी फोरम से। अच्छा, और लिखा है कि जी शो वेरी नाइस, जिंदगी गुलजार है, आरजे रुखसार हैव यू सॉन्ग सुनाए, क्यों नजर बदल गई यारा वे। ओके, मैं इसको सर्च करती हूँ, अगर तो ये पाकिस्तानी सॉन्ग है तो जरूर प्ले होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। डेडिकेट टू एस आर। ओके ओके, और इसके अलावा जी एक और गाना प्ले करते हैं, एंड गाना होगा बहुत अच्छा।

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.
3: Finally, ab thoda me time banta hai. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है.
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट.
7: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस. हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे. खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287. खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी जिंदगी.
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
9: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी.
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
10: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी.
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
11: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे. यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे.
12: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली. वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244.
13: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप. प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा. अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था. हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी. नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं. मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि. तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप.
8: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी. मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
14: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
15: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
16: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
15: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
16: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
15: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
16: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
15: 03125252786।
16: जी हा, 2315525786।
15: GAFM रेडियो नेटवर्क
16: सिंध जो आवाज़।

0: पानी महफूज रखने को, मिट्टी का जो कटाव है उससे बचाने और फिर सहराई फैलाव को रोकने वाले कुदरती बुनियादी ढांचे के तौर पर भी अहमियत दी जा रही है। हम इन्हीं प्रोग्राम्स में बात करते रहे कि कैसे सहराओं को रोकने के लिए पौधे लगाए जाते हैं, मैंग्रोव्स को लगाया जाता है पानी को आगे आने के लिए। तो ये तमाम चीजें जो चीन का महकमा जंगलात है उसके मुताबिक 2025 में चीन ने तकरीबन 3.56 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर शजरकारी की और जंगलात की बहाली का काम मुकम्मल किया, जबकि 4.927 मिलियन हेक्टेयर तबाहशुदा जो घास के मैदान थे उनको बहाल किया गया। जो मुल्क का पूरे मुल्क का जो जंगलाती रकबा है वो 25.09% तक पहुंचा। 25% जंगलात हैं पूरी जमीन पर चीन के, और जंगलात में जो लकड़ी का जखीरा है यानी वो जंगल जहां लकड़ी है और उस लकड़ी को अगर नापा जाए तो वो 20.988 अरब मुकब मीटर रहा। खास तौर पर चीन का जो शिमाली सहराई इलाका है वहां सहरा से निमटने का जो तजुर्बा है वो बड़ा जबरदस्त है जिसकी हम बात करते हैं। 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट जैसे मंसूबे हैं जहां दरख्त लगाने, घास के मैदानों को, सहराई जमीन को काबू करने के हवाले से काम किया जा सकता है, तो इस हवाले से बहुत काम आ रहा है। अब इस तजुर्बे का असल सबक क्या है, हमारे पास मुख्तसर है तो उसको मुख्तसर करते हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निमटना अब सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज और वादों का नाम नहीं रहा है। इसके लिए आपको बिजली के निजाम को तब्दील करना पड़ेगा, पानी के वसाइल का बेहतर इंतजाम करना पड़ेगा, जंगलात और जमीन को बहाल करना होगा, तवनाई जखीरा करने की सलाहियत को बढ़ाना होगा और शहरी और सनती बुनियादी ढांचे को मुस्तकबिल के मौसम के मुताबिक ढालना भी जरूरी है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी बदौलत आप इस चैलेंज से निमट सकते हैं कि आपको हर साल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा गर्म मौसम मिले और हर साल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा सर्द मौसम मिले, बारिशें ज्यादा हों, कुदरती आफात ज्यादा आए, सैलाब ज्यादा आए। तो इस तनाजुर में इस मसले को अब इस तरह से देखने की जरूरत है कि आप शॉर्ट टर्म तो बात कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म आपने क्या करना है। और ये सिर्फ एक मुल्क का काम नहीं है क्योंकि किसी एक मुल्क की जिम्मेदारी को पूरा करने से
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अरे न खुश और बेरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन 4 रंग जो खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबी जल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।

0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

हिकिड़े आशिक जी तबियत ख़राब थी पई त हुन जा दोस्त हुन खे वठी विया हकीम ॾे। त आशिक ॾिसी हकीम खे खिले पियो। हकीम पुछे त छो पियो मिली? त आशिक चयो,

ओके मैसेजेस हमें सेंड कर दिए हैं जी. अस्सलाम वालेकुम सहर, सॉरी सहरनी शहर गुलाब लगारी रोड बाशिम खान रेन से, शायर गाजी खान रेन, रिजवान अली रेन, फैजान अली रेन और शहजाद अली रेन. छोटी गुनैन जहरा आपका शो सुन रही है, आपका शो लाजवाब है, हम शौक से सुनते हैं. और इसके अलावा फायजा अली का गाना सुनना चाहते हैं जी. अमजद अली खोकर सोनहारी ने वंस अगेन हमें मैसेज किया, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा महबूब अली मोरू सिटी से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.

0: ओके कॉलर लाइन पे मौजूद है. हेलो. ओके हेलो, आवाज नहीं आ रही है. कॉलर 03000113488 एक और ट्राई करेंगे जी. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सावर चांदो खुदावल शहर का आरती का मैडम.
0: ओके कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
1: अल्लाह जी शुक्र.
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: जी? हाँ जी.
0: कौन सा?
1: बाजी रुखसार.
0: ओके बाजी रुखसार का प्रोग्राम सुन रहे हैं. मुझे ये बताएं कि टंग ट्विस्टर सुना है?
1: नहीं
0: नहीं सुना. फिर क्या सुना है?
1: ये सुना है कि सुपरवाइजर का ये प्रोग्राम है.
0: वो होता है वेनसडे को छोड़ के. आज वेनसडे है ना, वेनसडे वाले दिन सुपर वाइट नहीं होता. बाकी सारा वीक सुपर वाइट होता है, लेकिन वेनसडे को हम जो है ना सुपर वाइट नहीं करते. ठीक है
1: ठीक है
0: ठीक है. अच्छा और कुछ कहेंगे?
1: गाना बताऊंगा आपको.
0: गाना बताएंगे. गाने वाला सेगमेंट खत्म हो गया. मैं आपको गाना बताती हूँ, आप वो सुने. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. 03000113488

0: कॉलर हेलो
1: हेलो
0: जी कौन कहाँ से
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से ओके मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: जी हाँ जी हाँ
0: कौन सा प्रोग्राम है
1: बाजी झूठ नहीं बोलूँ जब घर मैंने ऐसे
0: ओ जब भी आप कॉल करें ना मेक

0: आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल आ रहे हो, ठीक है, तब तो आपकी कॉल चल सकती है, अदरवाइज आपकी कॉल ऐसे ही जो है नेटवर्क की वजह से फेल हो जाती है. नेक्स्ट कॉल है. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? गाजी खान बिन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
1: जी, अल्लाह का शुक्र करम है अल्लाह का.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह. प्रोग्राम सुन रहे हैं
1: जी? हाँ सुन रहे हैं जी.
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी गुलजार है.
0: ओके वेरी नाइस. और टंग ट्विस्टर सुना है?
1: थोड़ा समझ ही नहीं आया मेरे को.
0: समझ नहीं आया, मैं बताऊँ एक बार?
1: बता देते, समझ आता है बताता हूँ.
0: अच्छा, आपने कहना है कि ठंडे ठार ठाकुर ने ठिटरते हुए
1: ठंडे ठार ठाकुर ने
0: ठिटरते हुए ठाटा मारा.
1: नहीं समझो, नहीं मेरे नहीं बोला जाएगा.
0: चले और कुछ कहेंगे?
1: थोड़ा पहले बताया करो ना, 12 बजे के टाइम तक तो ना याद कर ले.
0: ओके ठीक है ठीक है ठीक है. ओके
1: 12 बजे का टाइम या जो डॉक्टर आता है ना उसे पहले बताया करो, तो बना याद कर फिर बोल लेगा अभी.
0: याद करके आएंगे. अच्छा,
1: अर्जेंट नहीं याद होता.
0: रट्टाफिकेशन. और कुछ कहेंगे?
1: और खैर खैरियत है?
0: हाँ जी खैर खैरियत है.
1: तबियत कैसे आज सुना? तबियत तुम्हारा खराब था.
0: हाँ जी, मेरा तबियत खराब था लेकिन अब काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह. और बस आप दुआ में याद रखा करें कि मजीद और बेहतर हो जाए. ठीक है
1: ठीक है, अल्लाह कुछ रखेगा आपको. ठीक है, अल्लाह तुम्हारे को.
0: ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज.

0: एक और कॉलर लेंगे. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: बाजी उस्ताद मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, ग्राम कंदरा से.
0: मोहम्मद आरिफ कंदरा से पहली दफा?
1: मोहम्मद आलम.
0: मोहम्मद आलम कंदरा से पहली दफा?
1: नहीं नहीं, दूसरी तीसरी बार.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: हाँ जी, जिंदगी गुजार.
0: टंग ट्विस्टर सुना?
1: वो तो सुना है पर पता नहीं लगा है.
0: पता नहीं लगा है, समझ नहीं आया है. मुश्किल है. अच्छा, मुश्किल है.
1: हाँ बस जो सुन रहे हैं सलाम, और उसको आपको सलाम, आपको टीम को सलाम.
0: चले, जबरदस्त जी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
4: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट
7: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघरायूं बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-879 and 0312-24-01-287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
10: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैन कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
12: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीज़नि खे लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं मरीज़ पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
8: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
13: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
10: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
14: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
14: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03-1-25-25-6।
14: जी हा, 03-31-25-25-786।
10: GAFM रेडियो नेटवर्क,
14: सिंध जो आवाज़।

इंतजार की घड़ियां थी एंट्रियां हमारे लिए। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा जनाब पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे हमारे पास मौजूद है। इन 2 घंटों में आप लोग सोच लीजिए कि कितनी ज्यादा वाली बातें करने वाले, और ये जो बहुत ज्यादा वाली बातें होंगी उसमें जाहिर सी बातें आप लोगों के साथ बातें करेंगे, लेकिन ज्यादातर बातें जो होगी वो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में गपशप होगी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मजेदार से गाने चलाएंगे, आप लोगों के साथ चैट होने वाली, कुल मिलाकर मजे मजे होंगे जनाब। तो रेडी शेडी हो जाइए हमारे प्रोग्राम में, हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आके फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसे बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून सारे घर वालों के हैं। तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाई साहब ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सी, तो बहुत प्यारी सी महजीन की आवाज में हम यहाँ पर नाच सुनते हैं, और नाच सुनने के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

आप सुन रहे हैं वाई टीशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं। भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा निखार रहना चाहिए या फिर आपके चेहरे पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ने आप लोगों को परेशान कर दिया है, चेहरे के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर लेना है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूज के फौरन बाद ही आप लोगों को इतने जबरदस्त इतने शानदार से प्रोडक्ट जब मिल रहे हैं तो उसका यूज कीजिए और आप अच्छा वाला जो है ना निखार हासिल कर सकते हैं और अच्छी वाली खूबसूरती भी हासिल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, यानी कि जब आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरत हासिल करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर बनी है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिए। ओके जनाब, यहाँ पर बताएंगे तफसीलन बहुत सारी बातें, लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए सवाल क्या होने वाला है वो सबसे पहले बताते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए और आप काइंडली टॉपिक के ऊपर भी बात कर सके। ओके जी, तो आज के सवाल की जाने पाते हैं, तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन वो मछली नहीं है। हाँ जी, और आप देखकर उसे बोलेंगे कि ये दिखता भी तो मछली की तरह है लेकिन क्या ये मछली नहीं है, लेकिन हाँ वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएंगे कौन सा जानवर पानी में रहता भी है लेकिन वो मछली नहीं है और शायद दिखता भी मछली जैसा है लेकिन वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएं जल्दी से, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घूरने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनने वाले लिसनर्स हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपने नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 2021 पर। ओके जी, 881 पर मैसेज भेजेंगे तो उसका मैसेज हमारे पास आ जाएगा। इसी के साथ साथ बाकी अगर आप हमें फेसबुक पर सुनने वाले हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जी ये लाड़का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। कितने सारे यहाँ पर देखो लोग हैं जिन्होंने कॉमेंट तो कर दिया लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं किया। अरे कंजूस हो, लाइक भी करना होता है। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। हाँ जी, ये बोनस पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए और कमेंट करते जाइए और मुझे बताइए कि कौन सा जानवर है जो पानी में तो रहता है लेकिन वो मछली नहीं है। उन्हें का अलावा तमाम संजय प्रोग्राम में शामिल आयो बाबा, बिल्कुल तमाम प्रोग्राम में जेके ना फीडबैक असा शामिल प्रोग्राम रखना, पर जिन जिन माण अन्या ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज ना ही कयो बाबा, तमाम छो न कयो आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज, अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज न करण की वजह यह है तमाम वर्त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमाम करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल को नथिया है, तो उन्हें चलाए तमाम छा करा तमाम के नंबर्स बुधाया भाई, नंबर से मथा तमाम राबतो करी वठो, जदी तमाम राबतो करी वठना तो तमाम के करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराई हुई, सो नंबर्स आए नोट करी वठो। ओके जी, नंबर से 033-27-38-43-09 बड़ी 338 84-390 एंड बियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बड़ी 312 50-25-900 नंबर्स आहे जेके तमाम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था, बिना कहीं देरी जे, बिना कहीं टेंशन जे, बस तां नंबर से राबतो कयो, तमाम कॉल भी करी सको था, तमाम मैसेज भी करी सको था, तमाम बुधायो बाबा तारिक भाई वेठो आए तमाम जे इंतजार में, तो केमल असना सोना लिसनर कॉल कन था आई एस ऑन जिला करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायूं था, सो तमाम भी थोड़ी हेल्प कराए वठना कयो असांजे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए से तमाम के वठण में आसानी थे आई तमाम जे आसपास जे मानन के भी खबर पवे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने असांजे एरिया में भी मिलन था। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा है। उन्हें कहा अलावा अलीशा हमें ज्वाइन कर चुकी है, सबसे पहले पोस्ट पर मौजूद, कहती है कि हमें थाम के रखना, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे, कहती है उन्हें जब देखते हैं तो बदल जाते हैं ये लहजा, जबा पे आ ही जाते हैं अदाएं शायरों जैसी, क्या बात है जी, क्या बात है, लिखती है कि मैं तेरे ख्यालों से निकलूं तो जमाना देखूं, ओ यह गाल कही नहीं। आमिर राज पर हमारे साथ कहते अस्सलाम वालेकुम,
पटीदन शॉप है, मेरी पटीदन पे शॉप है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आबिद भाई ने अवेलेबल करवाई है, बहुत अच्छी रिजल्ट है। ओके जी, आसिम राज पर जो है वो उनकी पटीदन में शॉप है, तो वहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश मिल जाएगा। तो जितने भी पटीदन वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो आमिर भाई की शॉप पर जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। ऐसा ही ना आमिर भाई, वेलकम कहते हैं आपको। और हमारे इरफान सियाज साहब हमारे साथ कहते हैं ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और गुड आफ्टरनून मैम आरजी, गुड आफ्टरनून टू यू सर। और जैन लिखते हैं पकड़ कहा अच्छा लड़कियों की भी नजर लगती है, कहते हैं कि माना कि तुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर मैं तो मतलब ही हूँ, मुझे तो तू चाहिए। कहते हैं कि जो तुझे देखकर फिर किसी और को भी देखे वो तमाशाई है, तालिबे दीदार नहीं। सही कहा आपने। और अबू हनीफ अल बलोची हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून वेलकम कहते हैं भाई। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, खुशामदीद। मीर मुमताज अली अस्सलाम अदी तमाची सफा भलिया कहते हैं अल्लाह पाक तमाम की खुश रखे, हमेशा मुस्कुराते रहो, माशाल्लाह बेहतरीन शो, जबरदस्त कंपेयरिंग गुड। आगा खान जतोई लाड़काने खान जतोई मोहम्मद मुदस्सर एस मुमताज जगड़ा है, सभी की चौथा भली करे आया डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो मुमताज वाह कोन मुख्य बुधाए जो तमान जो मोहब्बत हुआ था प्रोग्राम बुधो पर। तारिक भाई भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा आओ रेडी तैयार खुशबू भी लगाए आयो आया तो अच्छे पे खुशबू वाकई मुख्य खुशबू।

0: 310 31 43 842. अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीज
0: जो न थियण औरतुन जे मख में सूर थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अलकंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशल है
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा बताल नोक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली ते बारन औरतन ऐं मर्दन जो इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे ताईं मरीजन आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़दन में सूर बेचैनी डायरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बि कंदो आहे।
1: एड्रेस मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई कई मरतबा हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा चुके होते हैं लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ऐसा होता है कि वक्ती तौर पर हमें गोरा बना देते हैं खूबसूरत बना देते हैं लेकिन जब हम देखते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो कि हमारी खूबसूरती का ख्याल भी रख रहा है और हमें खूबसूरत भी बना रहा है तो आपके पास यस डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की यही क्वालिटीज है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर स्किन के मुताबिक तैयार हुए हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये जनाब आप लोगों के लिए जो तैयार हुए हैं जैसे मर्द हजरात खवातीन सब लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ये भी खास बात है सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसे आप सब लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि इससे स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया है तो आप लोगों के लिए ये भी कोई टेंशन की बात नहीं हो गई कि हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते आप बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट बिल्कुल शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोगों को मिल रहा है वाइटामिन ई बीट्स अल्फा आर्बुटीन कोजिक एसिड ग्लूटाथायोन और माइक्रो बीट्स ये जो तमाम चीजें हैं ना ये ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और वाकई जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो आप पाकिस्तान में इतने सारे फार्मूले देखते हैं क्रीमें देखते हैं आजकल को सब किसी को आपने देखा होगा कि भाई मैंने ये भी चीज जरा देखी थी कि दुकानदार भी आजकल जो है ना वो फार्मूले बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई फार्मूला परचेज कर रहे हैं या फिर आप लोगों को पता नहीं कि वो जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं वो किस तरह से है अगर ऐसा है कि उसको फार्मूले को लगाकर दो लोगों को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो ये चीज बिल्कुल भी आप लोगों के चेहरे के ऊपर सूट नहीं हो पाएगी कि उससे रिजल्ट अच्छा मिला है तो हमें भी अच्छा मिलेगा क्योंकि जब तक उस प्रोडक्ट के अंदर मेडिकेटेड फार्मूले नहीं होते उसके अंदर ऑल स्किन टाइप के फार्मूले नहीं होते तब तक वो आप सब लोगों को रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो ऑल स्किन टाइप के लिए हो मेडिकेटेड फार्मूला हो और हर स्किन के लिए सेफ हो चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन टाइप या फिर नॉर्मल हो तो हर स्किन के ऊपर यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और इसके अंदर ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना इसकी जो एडिशन रखी गई वो इसलिए रखी गई है ताकि आपका जो ये रिजल्ट है ना आपको रिजल्ट 10 गुना ज्यादा मिले और फेशियल वाला रिजल्ट मिले क्योंकि कई मरतबा हम ये सोच रहे होते कि भाई काश हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो हमें लगाने के लिए जो है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े पैसे भी ज्यादा नहीं हमारे खर्च हो बस हम लगाएं तो हम खूबसूरत हो जाए वो भी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। तो जनाब आपके पास मौजूद है डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो रातों का यूज कीजिए और आप अपने चेहरे पर देखेंगे एक हसीन सा निखार एक खूबसूरत सा ग्लो और आप हो जाएंगे सबसे ज्यादा हसीन चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन सब लोग ही लगा सकते हैं और खूबसूरत हो सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाएगी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी जल्द की जो शख्सियत है ना उसमें ताजगी आ जाएगी और आपका एतमाद भी बढ़ जाएगा। और अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन को ज्यादा खास बनाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लगाना कैसे लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप लोगों के लिए वाजे हो जाती है कि डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये आप लोगों की स्किन को डीपली क्लीन करता है यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी आप सोप वगैरह लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं उसमें जो असर आपको मिलता है ज्यादातर ऐसा होता है कि जब सर्दियों का सीजन आ जाता है तो आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है या इस तरह का कोई सीन हो जाता है आपको लगता है कि सर्दियों में कुछ अलग ही लगाना चाहिए कोई अलग ही प्रोडक्ट का हमें जो ना वो इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन इस मरतबा सीन जरा चेंज होने वाला है क्योंकि आप इस मरतबा डी स्किन का फेस वॉश लगाने वाले हैं और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना चाहे आप सर्दियों में लगा रहे हैं चाहे आप गर्मियों में लगा रहे हैं तो आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी जो आप सर्दियों में देखते ना कि हमारी स्किन ऐसे ड्राई सी
چکی ہے, اس کے اوپر الگ سے آپ کو لوشنز لگانے پڑ رہے ہیں, موئسچرائزرز لگانے پڑ رہے ہیں. تو جب آپ ڈی اسکن کا فیس واش ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کی اسکن جو ہے نا وہ ڈیپلی ویسے ہی موئسچرائز ہو جاتی ہے, کلین ہو جاتی ہے, پرکشش ہو جاتی ہے اور زبردست ہو جاتی ہے. تو آپ سب لوگ اس مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھیے ڈی اسکن کا فیس واش, تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ ڈی اسکن کا فیس واش جو ہے واقعی کمال کا فیس واش ہے. اور آپ اسے سب لگا سکتے ہیں, جیسے ڈی اسکن بیوٹی کریم کو سب لگا سکتے ہیں, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو بھی آپ ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں, بالکل آپ کے فیڈ بیکس مجھے ملتے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی. یہ آپ لوگوں کو ہی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ جائیں تو کون سا پروڈکٹ پرچیز کریں, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ خاص نشانی ہے, جن لوگوں کو نہیں پڑھنا لکھنا آتا اور ان کو دکاندار آسانی سے بیوقوف بنا دیتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ آسانی بھائی انف ہو جاتی ہے کہ آپ اگر جائیں ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کریں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی ڈبی کے اوپر ایک ڈاکٹر عورت کا فوٹو ہے, ٹھیک ہے, ایک پیاری خوبصورت سی ڈاکٹر ہے, اس کا فوٹو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی ڈبی پر ہے. تو آپ یہ دیکھ کر بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کو پرچیز کر سکتے ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا آپ یوز کیجیے, سارے لوگ ہی یوز کیجیے بھائی, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ آ کر بتاتے ہیں کہ باجی اساں کی ڈی اسکن بیوٹی کریم بھلو رزلٹ ڈنو ہے, اساں چوتھا تمہاں سبنی کی بھلو رزلٹ ملے, ائی تمہاں سب سونا تھی ونی. ان کے علاوہ اگر تمہاں پانے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرائن چاہیو تھا تو تمہاں جلائے نمبر سائن نوٹ کری وٹھنا کرو, ننتے رابطو کرو, کال کرو, میسج کرو, ان کے بدھائیو تو تمہاں بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کرائن چاہیو تھا, ائی تمہاں جی قریبی جنرل سٹور سے بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل تھی ونی. اوکے جی, تو پہلا نمبر ہے 03-12-50-25-907. بڑی 312 50-25-970. ایم یو نمبر ہے 03-27-38-4309. بڑی 332 ہے 73-84-309. یہ نمبر تمہیں ڈائل کری پانچ قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائے سکو تھا. ان کے علاوہ دیپک بھائی اساں جو پروگرام بدھے ہوئے, دیپک بھائی ہمیں ڈیرا والا یار سے سن رہے ہیں, اور دیپک بھائی جو ہے نا وہ ہمارے بڑے اچھے ڈسٹریبیوٹر جو کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم سیل کر رہے ہیں, اور جو لوگ ہمیں ڈیرا الا یار سے سن رہے ہیں وہ دیپک بھائی کی شاپ سے جا کر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو پرچیز کر سکتے ہیں. والے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ آپ کو نمبر بتا رہی ہوں, دیپک بھائی کا یہ نمبر ہے, آپ جتنے بھی ڈیرا الا یار والے لوگ ہیں وہ دیپک بھائی کا نمبر ڈائل کر کے اور ان سے بھی جو ہے نا وہ معلومات لے سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے اور کہاں کہاں پر اویلیبل کرانی چاہیے. یہ نمبر بھی ذرا نوٹ کیجیے, جی نمبر ہے 03-12-46-111-90. بڑی 312 46-111-90. یہ نمبر آئے دیپک بھائی جو جے کو تمہاں ڈائل کرنا ڈیرا الا یار وارن لسنرز لایا ہے, سو آپ ضرور سے اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے گا, اور دیپک بھائی ہمارے بڑے اچھے ہیں جناب, وہ آپ کو ریسپانس دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے جا کر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش پرچیز کر سکتے ہیں. اور دیپک بھائی کے بیٹے ہیں جناب مہروان, کتنا خوبصورت نام ہے ماشاء اللہ, وہ بھی ہمارا شو سن رہے ہیں, دیپک بھائی بھی ہمارا شو سن رہے ہیں, آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ, بنڈل آف تھینکس, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایسے ہی آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ سے محنت کرتے رہیے.

आप जितने भी सुनने वाले समाते हैं वो सब लोग डेज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए। अब तो भाई मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो आपको जरूरत है भाई साहब डेज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, लाजमी जाइएगा, परचेज कीजिएगा। और जनाब जितने भी हमें सुन रहे हैं लोग, जो कि हमें सुनते हैं जनाब डेरा अलायार से, वो दीपक भाई का नंबर डायल करके अपने लिए जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि डेज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं।

क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप इंजॉय करिए, उसके साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको खूबसूरत बना रहे हैं। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोग लगा चुके हैं उनसे पूछिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना प्यारा कमाल का रिजल्ट उनको मिल चुका है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, आप सब लोगों के लिए है। जी हमारे साथ हमारी दर्दी दिल लिखती है कि रूहे मन आंखें तेरी ताबे कर दी गई हैं, उनका खिल उठना मुरझा जाना तेरी नजर आने न आने से वाबस्ता है, तो मेरे लिए वही यूज्ड हो जिसके बारे में रब फरमाता है। ओके, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, हाँ तुम यूज्ड ही तो हो, आसानी सुकून और दुखों की गहराई निकल कर मिल जाने वाली रहत। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा ही हमारे साथ अबू हनीफ अल बलूची कहते हैं कि हे ढूंढती जिसको नजर मेरी वो तुम नहीं तो कौन हो, हे जिसका नाम जिंदगी वो तुम नहीं तो कौन हो, था जिसके वास्ते ये दिल दर्बदर रहा अब तक मेरे जहां में, वो कमी तुम नहीं तो कौन हो। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। अच्छा, उनके अलावा हमारे साथ हैं आबिद भाई, कहते आमिर भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है, आप दीपक भाई को ही देख लीजिए।

कि जो लोग खाली सिर्फ सोचते रहते ना, फिर वो सोचते ही रह जाते हैं. तो इतना मत सोचिए कभी भी जनरल स्टोर से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए. अच्छा वही वफाई, पता नहीं, हाँ हाँ मैं समझ गई बात आपकी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. और ये हमारे साथ हैं जी गदा हुसैन मल्हा, कहते हैं बाजी मैं गदा हुसैन मल्हा विलेज अंदर खान मल्हा मोरो से. बाजी आज की टॉपिक शायद ओके हो गया. कहते हैं बाजी मैं आपका शो तकरीबन 4 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन वो जो आप कहती है ना घुनने वाले लिसनर्स, बस वही वाला हूँ मैं. और कहते हैं कि बाजी आज भले कुछ भी हो जाए, चाहे लिस्ट ही क्यों ना फुल हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे गाना सुनाना नुसरत अली खान का. मुझे इस शराबी, अच्छा चले मैं आपको ये गाना बिल्कुल आपको सुना दूंगी, भले लिस्ट फुल हो जाए लेकिन आपका गाना लाजमी चलाएंगे. और हमारे साथ ही अल्ताफ अली गादी बलोच कराची से कहते हैं, अच्छा टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया. हिदायतुल्लाह अहमदानिया में सुन रहे हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं हिदायतुल्लाह. और हमारे साथ ही नजीर कुसु भाई, ओके जी बलोचिस्तान से मैं सुन रहे हैं नजीर को. सो भाई बताएं जरा बलोचिस्तान में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे लगता है कि हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए. और जहां भी आप जाएं, कहीं भी आप विजिट करने जाएं, घूमने जाएं, ट्रेवल करने जाएं, तो वहां पर आप लोगों को हर करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आराम से मिल जाए. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आप बस लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से. क्या बात है, बढ़िया हो गया ना.

I'm listening to your show Encumber City. Okay, जी आपको भी welcome हो गया. फायजा का गाना कोई अच्छा सा सुना देंगे आपको. और आप जरा प्रोग्राम में बने रहिए हमारे साथ. Enjoy करते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक. आप सुन रहे हैं जनाब Whitish and D Skin Beauty Show. D Skin Beauty products का use करते रहिए. और time हुआ है जनाब news break का. उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, टॉपिक को फॉलो करते रहिए. मैं यूं जाकर यूं वापस आती यही रहिएगा.

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात

0: जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347 बट्टी

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
7: जी हाँ, 03135257686।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मादली, नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डे इज ब्यूटी शो। बिल्कुल जी स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो जनाब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, क्योंकि खूबसूरती के बारे में ये चीज तो आपने बिल्कुल सही से नोटिस करी होगी कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि भाई आपके जो चेहरे पर वो तमाम प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, जैसे कि आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम आ जाता है, एक्नी के निशानात आ जाते हैं या फिर रिंकल्स बहुत जल्दी आ चुके हैं, रेकल्स आ चुके हैं, क्रीकल्स आ चुके हैं, ये तमाम चीजें भी अगर आपके चेहरे पर मौजूद है आप उन्हें हटाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पाते हैं, तो भाई साहब आपने क्या करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है या फिर खाली मैं ही कभी कभी पूछ लेती हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आगे जाकर फ्यूचर में करेंगे तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों करेंगे। अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आपको ना उसका जवाब पता होना चाहिए कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों लगाएंगे। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ये फायदे आप लोगों को मिलते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि आप लोगों को पहले शायद इसके बारे में नहीं बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स जो एड किए गए हैं ना, तो इससे हमारी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के जो रिजल्ट्स हैं वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमारा जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट है ना इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज भी एड रखी गई हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो फेशियल वाले मिलते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना सिर्फ वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स हैं बल्कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को प्रीमियम फार्मूला बनाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो ऑल स्किन के लिए सेफ भी है और ये आपकी स्किन की हिफाजत भी करता रहेगा। तो आप लाजमी से इस्तेमाल करके देखिएगा, खूबसूरती हासिल करना और खूबसूरती को मेंटेन रखना ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। खूबसूरती हासिल तो आप वैसे भी कर लेते हैं लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन रखना थोड़ा सा अजीब सा काम हो जाता है, क्योंकि अगर आप काम भी कर रहे होते हैं और काम करने के साथ साथ आपसे स्किन केयर नहीं हो पाती है, स्किन केयर अगर आप नहीं करते हैं सही से तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपके चेहरे पर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप अप्लाई करें जो कि आप अगर इस्तेमाल करते रहें तो आपको जो खूबसूरती मिली है वो, अगर ऐसा होता है ना कि हम थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देते हैं तो उससे ये इफेक्ट आपके चेहरे पर ना आए कि भाई आपके चेहरे की स्किन खराब हो जाए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो सिर्फ खूबसूरत होती रहेगी, खराब होने के तो चांसेस ही पैदा नहीं होते मेरी जान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप सब लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो ये चीज भी याद रखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ अगर आप जाएं तो फेस वॉश लाजमी परचेज करके आए। और अगर फेस वॉश आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है, जैसे हमें प्यारी अलीशा ने बताया कि हमारे यहाँ फेस वॉश नहीं मिल रहा है, उनके यहाँ भाई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही आप भी बता दिया करें कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर कौन से प्रोडक्ट की कमी है ताकि वो अवेलेबल करा दिया जाए और आपके लिए आसानी से हो जाए कि बस आप जाएं और परचेज करके आ जाए। तो ये चीज भी आप लोगों को नंबर्स बताए जाते हैं जिनके ऊपर आप रابطہ करते हैं और फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप भी परचेज करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को और कहाँ से मिलेगी, डी स्किन का फेस वॉश परचेज करना चाहते हैं कहाँ से मिलेगा, तो आपको बता दिया जाएगा या फिर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके जी, तो नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर जरा नोट रखा करें। नंबर है, पहला नंबर है 0332738439। बड़ी 300 73 84 300 नंबर आई नो नंबर आहे 03 12 50 25
907 बड़ी 312 50 25 970 ही बई नंबर सवा डायल करे सगो था बाकी उनन मानन जे तरफ भी अचू जेके भई असा के बुधन पया डेरा अला यार खा डेरा अला यार भी हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है बड़े जोरों शोरों से सुना जा रहा है तो वैसे तो ये बात है कि डेरा अला यार में ना आप लोगों को हर अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर मार्केट में अपने किसी भी छोटे मोटे जनरल स्टोर्स में आपको डीसेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे क्योंकि ये दीपक भाई ने अवेलेबल करा दिए हैं। हमारे बहुत अच्छे जनाब डिस्ट्रीब्यूटर हैं दीपक भाई, उनकी मेहनत को उनकी अजमत को सलामी जनाब। इतनी मेहनत से और शिद्दत से डीसेंट ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते जा रहे हैं। तो दीपक भाई ने डेरा अला यार में सब तमाम शॉप्स के ऊपर डीसेंट ब्यूटी क्रीम एंड डीसेंट का फेस वॉश अवेलेबल करा रखा है। तो आप जरूर से अगर वहां से हमें सुन रहे हैं डेरा अला यार से तो मार्केट जाइएगा, चक्कर लगाइएगा और डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। लेकिन अगर वो लोग जो कि भाई नहीं चाहते कि भाई हमें नहीं पता कि कहां पर अवेलेबल हैं, कहां से मिल सकते हैं, तो आप लोगों को दीपक भाई का नंबर भी बता रही हूं साथ साथ, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के फौरन बाद ही दीपक भाई आप लोगों को गाइड कर सकता है कि आप कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। ओके जी, सो नंबर है 03-1-2-4-6-1-1-9-0 ये नंबर है जो कि दीपक भाई का है। आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात ले सकते हैं कि कहां कहां पर डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और जनाब इस वक्त दीपक भाई हमें सुन रहे हैं और उनके प्यारे बेटे हैं मेहरवा। मेहरवा इतना खूबसूरत नाम है, कसमें क्या बात है। तो उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेहरवा को और दीपक भाई दोनों को वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों की इतनी मेहनत शामिल है तो आपकी जनाब मेहनत को अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देगा और ये मेहनत का आपको फल मिलेगा, इनाम मिलेगा। और आप ऐसे ही सच्ची दिल से सच्ची मेहनत से डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से मेहनत करते रहिए और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो भी जनाब लगाकर अच्छी और खूबसूरत हो चुकी है क्योंकि उन लोगों को पता है जो लोग डीस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो जानते हैं कि डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो लगाने से ये भी चीज आप लोगों को टेंशन नहीं कि भाई हमारी स्किन खराब हो सकती है या फिर क्या मसला हमारी सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते। आप हर स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, मर्द हज़रात ही लगा सकते हैं, खवातीन ही लगा सकते हैं। और जनाब ये भी कोई टेंशन नहीं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम लगाएं या ना लगाएं। कॉम्बिनेशन टाइप स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो, हर स्किन के ऊपर आप बिल्कुल लगा सकते हैं और हर मौसम में भी लगा सकते हैं। तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। और इनका अलावा प्रोग्राम जे बे कलाक में अच्छी वया है तो तमा के चौथा भली करी आया तमा जो मोहब्बतू आयन बाबा तमा कनी कनी वाकी पानी हुजन जो सबूत दे छरी ना करे असा के खबर हो जे तो तमा जिंदा आयो। आई जेको आज मा तमा का सवाल पुछवा है, सवाल बिल्कुल आसान आई आसान खां भी आसान पुछवा है। तो तमा मुके बुधायो वो केड़ो जानवर आ है जेको पानी में त रहंदो आ पर वो मच्छी ना है। हां जी वो फिश ना है। आई हां तमा चवंदा त लगंदो त फिश जी आए पर फिश आए कोन। तमाम बुधाए मुख्य जल्दी जल्दी 888-1-9 फेसबुक ते तमाम मुख्य ज्वाइन करना हलो धीरे तमाम जला डाडो बलो फायसाली जो गानो हलायो आ है वाइसा जो गानों बुधूं था गाने से गरुगर तमांचा कुछ मैसेजेस आए उन तरफ भी अचूं था तमाम पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो यू अलावाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कौन लगाई हाँ भाई उनका नाम ही इतना प्यारा है देख लीजिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके नाम की वजह से कितनी डीस्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वो जान आ चुकी होगी।

दिल रुबा के चौथा बाबा भली करी आया ए दिल रुबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आई परचेज करे वरती आए एंड दिल रुबा जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कर दी बिल्कुल तुम इस्तेमाल करो खूबसूरती जो ख्याल रखना कर सही

अभी जी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने एंजॉय किया। बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है जो कि AI वर्जन होने वाला है। ये गाना मैंने मतलब कल ही सुना था और मुझे ये लगा था कि ये गाना मैं कल अपने प्रोग्राम में लगाऊंगी लेकिन इस गाने की फरमाइश आ चुकी है। किशोर भाई ने गाने की फरमाइश करी है तो हम इस गाने को एंजॉय करेंगे और साथ साथ जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दे और मुझे बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस वॉश लगा रहे हैं ये भी बताइएगा।

आपको जी आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से। हिदायतुल्ला कहते हैं कि तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है, अब मेरा आवाज साफ आ रहा है, मुझे बताएं।

0: करे
1: क्या बात है जी अगर तमां जी स्किन ग्रीम जो इस्तेमाल करना तो बाकी मानू तमां जी लाइ भी चवंदा तमां जी रेस बाबा केयर करे तमां जी हुस्न जो त जवाब ही कोड़ा है आईडी स्किन ब्यूटी क्रीम ता मर्द हज़रात ख़वातीन सभी लगाए सको था दर्द से लगती है कि इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया उसके ख्यालों की दुनिया होती है क्योंकि वहां वो वही जिंदगी जीता है जो उसका दिल चाहता है चाहे वो चंद लम्हों के लिए ही क्यों ना हो यस सही कहा आपने हिदायत आपने भी जवाब दे दिया ओके हो गया जी अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं कहते सलाम बहना वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया और आपने लिंक शेयर कर दी है गाना आपको लगाने की कोशिश करेंगे सोमाटो कहते हैं थैंक्स आरजे इट्स ओके डोंट वरी उम्मीद अली लाशारी हमारे साथ है उम्मीद भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी आरजे सदरा केड़ा हाल है तमाम जा प्रोग्राम तमाम सुठो आहे मिरपुर खास जुलरी खां उम्मीद अली लाशारी सलाम अदील अबड़ो चाचा खाले जुड़ी जो आरजे सुमेरा और फजली आरजे गुलनाज प्लीज प्ले शमन मीराली ओके जी शमन तांजला हलाए वठूं था शमन बाबा कारी कोन वेंदो तव्हां जे लाइ वेठो आहे सीट ते पर हुन जो टाइम ईंदो त लाज़मी हुनखे हलाए वठूंसि था तव्हां हिकिड़ो कमु कयो मिरपुर ख़ासि में पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से हलिया वञो उतां तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करे अचो ठीकु आहे

है किशोर भाई देख लेने, वही सोच रही थी मैंने, ये सोचा था कि मैं ये गाना जो है ना वो लाजमी लगाऊंगी आज वाले प्रोग्राम में या शाम वाले प्रोग्राम में, लेकिन फिर मशी आ जाती भाई आप लोगों को वो है ना जरा कनेक्शन है भाई हमारे बीच में डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, समझ रहे हैं। अच्छा चने से थी वो हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। वैसे इधर तो सारा सिस्टम सही है, अगर मैं कुछ करूंगी तो थोड़ा इधर उधर सीन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है सही है सब। हिदायतुल्लाह आप जरा उधर अपना चेक कीजिए, नेटवर्क का शायद इशू हो सकता है थोड़ा सा। और ये जी गुलाम अब्दुल गुलाम कैसर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे अंकल को, और आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा। अच्छा फेस वॉश की ये ना खास क्वालिटी है कि फेस वॉश आप लोगों की स्किन के अंदर जाकर आपके चेहरे को डीपली क्लीन कर देता है। अगर आपकी स्किन क्लीन होती है तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे पर ग्लो आ चुका होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई अब हम कौन सा साबुन लगाएं कौन सा फेस वॉश लगाएं, क्योंकि ये चीज ज्यादा हमें ना परेशान कर देती है। तो बस आप डी स्किन का फेस वॉश अपने पास रख लीजिए, ट्रैवल करने की अगर आप शौकीन हैं तब भी आपके पास मौजूद रहेगा, बस आप कहीं पर भी जाइए डी स्किन का फेस वॉश साथ लेकर जाइए, इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी वापस आ जाते हैं, आप यहीं पर मौजूद रहिए, मैं यू जाकर यू वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: It's 2:30 p.m. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
4: अरे न खुश ऐ बेरोनो की स्किन हर इन जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू की तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जे में आहिन चावरन जी खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जी खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जिल्द के बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा डॉक्टर मरीज़नि
6: 347-32-41-230।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक

0: खाते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-94-294।
1: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डीं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डीं फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 0310-31-43-842।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
6: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
6: जी हाँ, 0331-552-5786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

श्रवण का गाना सुनना चाहते हैं, ये गाना उन लोगों को डेडिकेट जाता है। और साथ ही साथ जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई नहीं बताए तो क्यों नहीं बताते हैं, जड़ो थी दो सभी जो माता सभी जेड़ो कर तमाम जी स्किन ब्यूटी क्रीम को न वरती है छो न वरती है वाह वाह ऐसो अजकल मैं वाइब में गाल वाइब चेक कयो वाइब बस मिलन घुर्जे बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। डीस्किन ब्यूटी क्रीम तो अना तक कोन वरती है तो डीस्किन ब्यूटी क्रीम वठण जा इलाही सारा फायदा बाबा। सब का पहली गाल तो डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो ये सभी मानों के तैयार थी है सब माना सब इन में मर्द भी अची वन खातन भी अची वन अक्सर कुछ मानू वही चवन तो बाबा क्रीमों तो सिर्फ मायू वणंदी वरी हाँ अगर असा डीस्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर फेशियल जो जिक्र क्यूं था तो तुम सोचिंदा हूं तो बाबा ये जी डीस्किन ब्यूटी क्रीम आया खातन के लिए तो बिल्कुल भी ये कोने को तवी सोच के थोड़ा चेंज कंदी डीस्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तक बुधाईदी तो डीस्किन ब्यूटी क्रीम ये तुम सभी के लिए है मर्द भी लगाए सो था खातन भी लगाए सकता डीस्किन ब्यूटी क्रीम यकीन तुम्हें जो है फेशियल वारा रिजल्ट डी छो तो इन अंदर जो वाइटामिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स ये बई चीजों हैं ये महंगन महंगन फेशियल के अंदर एड कई व्यूं इन लाइ जी फेशियल जो रिजल्ट जो दह गुना वी वे तो बिल्कुल तुम्हारी डीस्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी वाइटामिन ई बीट्स माइक्रो बीट्स के एड कयो वो है जी तुम्हारी डीस्किन ब्यूटी क्रीम की रिजल्ट दह गुना ज्यादा वी वे।

बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में सफ़ा भलो रिज़ल्ट ॾे पई। ॿ रातियूं लॻायो ऐं तव्हां पंहिंजे चहिरे खे ॾिसो, चवंदा वाह वाह वाह वाह, पहिरियां छो न पिया वठूं, पहिरियां सिदरा भाॼी जी ॻाल्हि छो न पिया वञूं। ख़ैर हाणे बि देरि कोन थी आहे, तव्हां वञो अगरि तव्हांजे घर में शादियूं थियण वारियूं आहिनि। वैसे हाणे मौसम अहिड़ो अची वियो आहे त सभिनी जे घर में तकरीबन शादियूं थियण वारियूं हूंदियूं, त तव्हां बि जल्दी जल्दी कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। ख़ूबसूरत थियण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, अगरि तव्हां ख़ूबसूरत थियण चाहियो था ऐं चाहियो था त कोई अहिड़ो प्रोडक्ट असां वटि हुजे जेको असांजी ख़ूबसूरती में चार चंड लॻाए छॾे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ज़िंदाबाद आहे बाबा, छो था घबरायो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, को टेंशन बि न त भई असांजी स्किन ख़राब थींदी, इहे थींदो, हो थींदो, कुझु बि न थींदो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, सफ़ा वीआईपी चिकना चिकना गोरा चिटा थी वेंदो, सो लॻायो ऐं लश्कारा मारियो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे। मां माशाल्लाह केॾी बक बक कंदी आहियां। हांजी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश बि तव्हां लॻाए सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश तव्हांजे अगरि अञा ताईं एरिया में अवेलेबल न थियो आहे त तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो। ऐं डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हां इस्तेमाल कयो, ॿई चीज़ूं लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। अच्छा उमेद भाई, कहते ही शमन जो गानो हले पयो बाबा, तां असा की मिरपुर खास मां बुधो पया, शमन जो गानो एंजॉय कयो। गदा हुसैन मल्हा लिख दे कि बाजी देख ले, आपको मैंने चार साल बाद कोई फरमाइश की थी, वो भी नहीं। अरे भाई, किसने कहा कि मैंने आपकी फरमाइश पूरी नहीं करी, मैं चली गई प्रोग्राम करके, आपका गाना नहीं चला। सबर तक हो, रुको जरा, सबर करो, गानो आए लिस्ट में, तां बुधंदा गदा भाई, एडी तकड़ न कंदा कयो, जल्दबाजी भली न हूंदी अथव। और कहते है डेडिकेट शॉपकीपर मोहम्मद बख्श मल्हा, विलेज आंदल खान मल्हा, बाजी उसकी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और पूरे विलेज वालों को डिस्काउंट पर दे रहा है। माशाल्लाह क्रीम बहुत बहुत खूब है आपकी तरह, क्या बात है, ये तो भाई मेरी तारीफ हो गई। गदा भाई बहुत शुक्रिया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, मुझे ये जरूर बताइएगा। अच्छा रिजवान अली भी हमारा शो सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं भाई साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। और स्मार्टू कहते हैं वाह वाह वाह, जुगानुआ ये बुधा जाई। और रशीद खोसू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।

हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं और मैं इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ. नाइस प्रोग्राम आपको. सलाम सारे दोस्तों को सलाम. वैसे रशीद भाई क्रीम का नाम तो लिखें, कौन सी क्रीम लगाते हैं. और जी हमारे साथ ही किशोर भाई बंद कटी बेटा आयो. खिलो खिलो बाबा. अल्लाह से करे हमेशा ये तांजे लबन ते खिल जका सलामत हो जे. बिलाल अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी आप मोहतरमा? सफा मजे में आता पांजा हाल अहवाल जो की आयो ठीक ठाक आयो. दी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो था कौन? सुमाटू कहते हैं कि सदरा आप झगड़ा भी करती हैं, आप तो मासूम बच्चा हो. हाँ पर मासूम बच्चा भी तो कदें कदें झगड़ा करना है ना. इट्स नॉर्मल. आई तमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम न लगाई तो झेड़ा थींदा वड़ा झेड़ा थींदा. अच्छा तारिक भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई. बिलाल कहते हैं सिक बंद करायो आडियो भलो कयव अची वयो. और हिदायतुल्ला कहते हैं कि सदरा आंगन ड्रामे में वो सजल अली कब आएगी? वो थोड़ा लास्ट में आएगी. अभी तो ये चल नहीं दे, मतलब कुछ लग रहा है कि 4-5 एपिसोड्स आए हैं तो वो लास्ट में आएगी तकरीबन. उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. तब तक आप ऐसा कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए.

बहुत खूबसूरत गाना गदा भाई की चॉइस के ऊपर हम एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं वोल्टेज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, कुट्टी के खाई न लगे जो।

सोचने वाली बात है। वैसे ये सही बात है, जो लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं, सताते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आप सोचते हैं कि भाई ये हमारा रिश्ता है, इस रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो कभी कभी रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि सिर्फ अना और खामोशी से भी टूट जाया करते हैं। और एक तरफ दिल चाहता है कि बात खत्म ना हो, दूसरी तरफ जबा पर सिर्फ एक लफ्ज भी नहीं आता, माफ कर दो, ये कहना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और हर बहस जीतना भी तकरीबन जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम बहस करेंगे अपने किसी प्यारे से, किसी अजीज से, या जिसे हम शायद खोना नहीं चाहते, तो जब आप बहस करते हैं ना, तो वो तमाम चीजें जब आप कर रहे होते हैं, तो वो उस इंसान की लाइफ में जो होता है ना, आपकी वैल्यू को इतना कम कर देते, इतना जीरो कर देते हैं कि फिर आप बैठकर सोचते हैं कि मैंने क्या किया था। आपने बहस करी थी तो जब रिश्ते होते हैं ना, उनको संभालने के लिए कभी खामोश रह जाना और कभी कुछ ना कहना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनको हम खोना चाहते हैं, जिनके साथ नहीं रहना चाहते, फिर तो आप जरा रज के बहसें कीजिए कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ रिश्ता बचाना चाहते हैं तब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो जरूरी होता है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि भाई एक रिश्ता है जिसके अंदर आप घुट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई उस रिश्ते को बचाना है, तो ये वाली सिचुएशन भी आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। और आपकी जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों की जिंदगी को एकदम से बदल कर रख देगा। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है, मेडिकेटेड फार्मूला है, स्पेशल वाली चीजें इसके अंदर एड की गई है, तो आप लोग घर बैठे मुनासिब सी कीमतों के अंदर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि भाई आप इस्तेमाल करने के बाद कहेंगे कि आए हाय मजे आ गए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए, चाहे आप मर्द हंस जाते हैं

अच्छा मैं महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर जी, सदा खुश रहें और खुश आमदीद, मुस्कुराती रहें, आमीन। और सिस्टर अलन फकीर का सॉन्ग प्ले करें, सो नाइस ऑफ यू भाउ, मां कोशिश कर दी तांजी पसंद इन जा गाना आलाइंदा जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा तारिक भाई कहते हैं कि डिसेंट ब्यूटी पार्लर जेकब आबाद में है, हमारी व्हाइट एज क्रीम और डी स्किन सेल कर रहे हैं। अच्छा जेकब आबाद में जितने भी लोग सुन रहे हैं वो डिसेंट ब्यूटी पार्लर से जाकर भी परचेज कर सकते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बिलाल ये न कर बाबा, ये न कर, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी अचो। उम्मीद भाई कहते असान क्रीम यूज को सजा बाजी झुलरी मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी भा कर ऐसा मीरपुर खास में अवेलेबल भी कराई छी है। रशीद भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कई है, ओके जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करा रहो। किशोर भाई कहते हैं कि आमीन हाँ अल्लाह सही जरूर सोची। वाकई वाकई मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। और कहते हैं हाँ जी वो सही है ड्रामे की बात कर रहे हैं, ओके ओके। बिलाल कहते मोहतरमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठा तो उनसा छा थींदो, उनसा तव्हां खूबसूरत थी वेंदा, तव्हां सोहणा थी वेंदा, तव्हांजे चेहरे ते जेके रिंकल्स अची विया आहिनि, एकनी निशान आहे या कुझु बि आहे, रंगत सांवरी थी विया आहे त उहा चिटी थी वेंदी, गोरी थी वेंदी, तव्हां सोहणा थी वेंदा, समुझो था कुल मिलाए कटे सटे। तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था।

क्या बात है। बाकी साइंस जी तुम डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना तो ते भी बमा आईनू आशिक थी वेंदो तमा एतरा सुना थी वेंदा मानो तमा खा पुछना दसो त सही हाल अहिवाल एतरी खूबसूरती काने आंदी तो उनन के ता बुधाय बाबा ही कमाल है डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो आई डीस्किन ब्यूटी क्रीम बाबा असानी पूरी टीम मेहनत करे पई तमा जले हर जगह ते वनी वनी वो अवेलेबल कराइन पया तमा जो फर्ज बन जे तो तमा ट्राई करी दिसना ता खबर पंदी त एतरो सदरा आखिर मथो छोती है तो बाबा जाहिर गाला प्रोडक्ट में दम आहे आई प्रोडक्ट कम जो आहे तनी ता के बुधायु था न त छो बुधायो आ सोचण वाली गाल अच्छा रमजान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ दर्द दिल के दी चंदा मैं भी देखती हूँ ड्रामा जी देखी अच्छी बात है। अच्छा हाशिर अजीम कहते हैं मगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं। आपको किसने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? पता नहीं कैसी कैसी चीजों के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। क्या जानते हैं आप। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं प्रोग्राम देखो और फरमाइश देखो। वही मैं सोचती हूँ कभी कभी लोग ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश कर देते हैं कि मैं सोचती हूँ कि भाई साहब ये गाना मुझे लगाना है। हाँ जी लेकिन हम लगा भी देते हैं। उम्मीद भाई कहते हैं कि बाजी सिद्रा मुझे तरफा चाचा खाले जूड़े जो को वेलकम करो ज्वेलरी मेरे पर खास खां उम्मीद अली लाशारी सलाम। उम्मीद भाई कहते हैं कि बाजी सिद्रा मुझे तरफा चाचा खाले जूड़े जो को वेलकम करो ज्वेलरी मेरे पर खास खां उम्मीद अली लाशारी सलाम।

फाइनल समझो था। तो देश खन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जिन्हें इन तीन शादी कौन थी तवे शादी थी वे बाकी जिनसे घर में शादी थे वाली तो वे भी ट्राई कर सन था छो तो बाबा ये फेशियल या ब्लीचिंग के चक्कर में न पो तवे हथ में हाँ अड़ो मैजिकल प्रोडक्ट अची वो है जो तवे खूबसूरती के बधाए छी तवे सोनो प्यारो गोरो चिटो बनाए छी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लाजमी ट्राई कर डिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूलो है तो टेन सौ महीने असि स्किन खराब थी वी या असा सेंसिटिव स्किन से लगाए सूं था या ना लगाए सो हर स्किन के मथा लगाए सो था हर कोई लगाए सके तो टेंशन फ्री थी करे लगाए सको था। टोमाटो कहते हैं कि सेट ये सॉन्ग किसका फेवरेट है मास्टर मंसूर का ये मैंने एवं ही लगा लिया था किसी ने मास्टर मंसूर के गाने की फरमाइश कर दी तो उसके बदले में

हजार भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। हजार भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए।

बाबा शादी थी वेंदी दिल नंढी न कयो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम त इस्तेमाल कयो पोइ चओ ॿियो ॻाल्हियूं वरी पोइ कंदासीं लॻायो त सही ख़बर पएव त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केॾो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले पियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न त उहा तव्हां हर मौसम में बि लॻाए सघो था ऐं राति जे टाइम लॻाईंदो जंहिं महिल तव्हां सुम्हण वञो लॻाइण खां पहिरीं तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो डी स्किन जे फेस वॉश सां सही आहे जॾहिं तव्हां इहे सभु चीज़ूं कंदा पोइ तव्हांखे अहिड़ो वाह वाह रिज़ल्ट मिलंदो वाह वाह रिज़ल्ट सम्झो था सभु तव्हांखे ॾिसी पुछंदा त छा पिया लॻायो छा पिया कयो ॾाढा इहो महांगो फेशियल कराया आहियो पर तव्हां हुननि खे चइजो बाबा मुनासिब क़ीमतनि में असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली आहे जंहिंजो इस्तेमाल करे असांखे फेशियल वारा रिज़ल्ट मिली विया आहिनि सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद जी मैं वही सोच रही थी ये गाना कौन से गाने की कट पर है लेकिन ये आपने बता दिया आपके प्यार में ये बात है गाने ना सुनो तो फिर गाने सारे भूल गए हैं अच्छी बात है।

अच्छा, दर्द दिल कहती है कि जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और वजह आप हो। अच्छा ओके, समझ गया समझ गया।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: एलोवेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस और झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम और ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे नी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जेमे अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सघो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंद मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली आसपास की आवाम खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
6: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
10: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
6: 03132525786।
10: जी हाँ 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद ढाई घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं और सरहद पार से भी जो दुरंदाजियां हैं दारंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में और बिलखसूस जो पिछले एक साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
1: केपीएम इमरजेंसी है गवर्नर राज जो फैसलो सोची समझी वो सोहेल आफरीदी की वे वजीर थियण बाद सूरत हाल मुल्क सलामती के खतरे तई पहुंची वही कौमी असेंबली में गालाईंदे कानून वाले वजीर सेनेटर आजम नजीर तारण है तो बार बार निशानदी बावजूद केपी हुकूमत गाल न मनी दिफा वे वजीर ख्वाजा आसिफ तो पीटीआई हुकूमती दौर में जो कुछ सब याद आए केपी में गवर्नर राज का सवाय बो को ऑप्शन न हो। खुदा के वास्ते केपी से गड सिंध ते भी नजर रखो पीटीआई वट फैसले के गलत साबित करने लाय को दलील ना है कौमी असेंबली में गालाईंदे एमकेएम अगवान फारूक सत्तार तो हुकूमत केपी में गवर्नर राज जो फैसलो दिल से ना कर नजर केपी से आए सागी सिंध ते भी रखी वजें

पीटीआई केपीए में इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज खे पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। चेयरमैन बैरिस्टर गौर जे तरफ़ां वकील अली ज़मान दरख़्वास्त दाखिल कराई। बैरिस्टर गौर चयो आहे त गवर्नर राज ऐं इमरजेंसीअ खे पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो आहे। उमेद आहे त अदालत सूबे में जमहूरियत बहाल कंदी।

साथी ॾियण ऐं खिते में अमन लाइ गॾिजी कम करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। उमानी परडे॒ही वज़ीर बदर बिन हमद जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात। ॿेतरफ़नि लाॻापन समेत खिते जे सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाणनि जो खिते जे अमन लाइ सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ऐं अमान विच में लाॻापा तारीख़ी दोस्ताना ऐं मज़बूत बुनियादनि ते क़ाइम आहिनि। उमानी परडे॒ही वज़ीर चयो त पाकिस्तान सां वापार समेत ॿियनि शोबनि में सहकार वधायो वेंदो। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि क़ीमती पथरनि ऐं मदनियात बाबति इजलास। क़ीमती पथरनि बाबति पायलट प्रोजेक्ट में सुस्तीअ ते कावड़ जो इज़हार। शहबाज शरीफ़ चयो त क़ीमती पथरनि ऐं मदनियात वारे शोबे जी तरक़ी पहिरीं तरजीह आहे। कंहिं बि क़िस्म जी सुस्ती क़बूल न कई वेंदी। क़ीमती पथरनि जी दरामद बाबति तरजीह बुनियादनि ते क़दम खया वञनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
10: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370

0: चोटी 95244।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला है ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सको था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदू। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाव खड़ी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
7: जी हाँ, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
2: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0300244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 0301043842।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331-252-5786।
4: जी हा 2311-5525-786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
5: खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842। امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
6: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
8: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
2: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-3-41-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331-252-5786।
7: जी हा 2031-5525-786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: इल्जाम लगाए आप सदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो हालात बने हैं सियासी कानूनी और आईनी वो पीटीआई की खास तौर पे उनकी सूबाई की आदत उसमें उनका अहम किरदार है। एक बार फिर अपना हाथ वजीर आजम साहब को हम सब अपना हाथ अपोजिशन को अपोजिशन की क्यादत को अपोजिशन के सियासी

0: बातों से आगे बढ़ाते हैं कि आए हम बातचीत करें।
1: बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो जिम्मेवार पीटीआई के करार दे छो। हुकूमत अपोजिशन के गाल तजवीज़ भी दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कंदे बिलावल भुट्टो हुकूमत इमरजेंसी वो एटमी बम इस्तेमाल करण का पेरी अपोजिशन से गाल अपोजिशन के मनो पवो तो पीटीआई हुकूमत पान सियासी आपघात किया। सदर आइन मूजिब खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी ए गवर्नर राज लगा फैसलो हमेशा लाए ना है। हुकूमत अपोजिशन मामले से वेही बीहर गाल हालतू बेहतर थी तो वजीर आजम के इमरजेंसी खत्म करण की दरख्वास्त कंदुस। सहिनवी अंसर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है। दहशतगर्दी की सूरत में भारत जो ऑपरेशन सिंदूर अज भी जारी है। भारत का पाक फौज हथा तबाह थियल छह जहाज हजम न थी रहा है। सभी के मुतहद थी दहशतगर्दी खिलाफ रणो पवो। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजी हुकूमत का केपीए में कयल कदम वापस वठण जो मुतालबो कर छो। कौमी असेंबली के खिताब कंदे महमूद खान अचकजी चयो तो हुकूमत जा कदम गैर आइनी आहिन वापस वरता वन। बैरिस्टर गोहर चयो तो हुकूमत जमहूरियत ते राता हो हायो आहे। हुकूमत 58 2B के बीहर जिंदा कयो। अवां चूंडियल हुकूमत के घर भेड़ो कयो आहे। समूरा नोटिफिकेशन रद्द कयूं था। समूरे पाकिस्तान के गैर फाल कयो वियो आहे।
2: बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद 2.5 घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं और सरहद पार से भी जो दुरंदाजियां हैं दारंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में और बिलखसूस जो पिछले एक साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
1: खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी ए गवर्नर राज जो फैसलो सोची समझी कयो वयो। सोहेल अफरीदी जी वरी वजीर थियण बाद सूरत हाल मुल्की सलामती के खतरे ताईं पहुंची वई हुई। कौमी असेंबली में गालांदे कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारण जो चवण हो तो बार बार निशानदही बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गाल न मञे। बचाव वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो तो पीटीआई हुकूमती दौर में जो कुछ कयो सब याद आहे। केपीए में गवर्नर राज खां सवाइ बियो को ऑप्शन न हो। खुदा के वास्ते खैबर पख्तूनख्वा से गड सिंध ते भी नजर रखो। पीटीआई वट फैसले के गलत साबित करण लाए को दलील ना है। कौमी असेंबली में गालांदे एमकेएम अगवान फारूक सत्तार चयो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो फैसलो दिल से ना कयो। जेका नजर केपीए ते आहे सागी नजर सिंध ते भी रखी वञे। पीटीआई केपीए में इमरजेंसी ए गवर्नर राज के पिशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर छो। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के तरफा वकील अली जमान दरख्वास्त दाखिल कराई। बैरिस्टर गोहर चयो तो गवर्नर राज इमरजेंसी के पिशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर छो है। उम्मीद है अदालत सूबे में जमहूरियत बहाल कंदी।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह

0: जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुख ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीजनि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजनि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
9: तपोए GAF

0: 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
0: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86
0: जी हाँ 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना मातली, मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: महमूद खान अचक से चयो त हुकूमत जा कदम गैर आइनी आहिनि, वापस वरिता वञनि। बैरिस्टर गोहर जो चवण हो त हुकूमत जमहूरियत ते राताहो हयो आहे। हुकूमत 58B खे ॿीहर ज़िंदा कयो। अवां चूंडियल हुकूमत खे घर भेड़ो कयो आहे। समूरा नोटिफिकेशन रद्द कयूं था। समूरे पाकिस्तान खे गैर फाल कयो वियो आहे।
1: बड़ी सोच विचार के बाद और मटीरियल 2.5 घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं, और सरहद पार से भी जो दरअंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए, और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और बिलखसूस जो पिछले एक साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 25 से ऑनवर्ड, वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
2: केपी में इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज जो फैसलो सोची समझी कयो वियो। सुहेल आफरीदी जे वॾे वज़ीर थियण बाद सूरत हाल मुल्की सलामती खे ख़तरे ताईं पहुची वई हुई। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तरण चयो आहे त बार बार निशानदेही बावजूद केपी हुकूमत ॻाल्हि न वञे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई हुकूमती दौर में जेको कुझु कयो सभु यादि आहे। केपी में गवर्नर राज खां सवाइ ॿियो को ऑप्शन न हो।
0: ख़ुदा जे वास्ते ख़ैबर पख़्तूनख़्वा सां गॾु सिंध ते बि नज़र रखो। पीटीआई वटि फ़ैसिले खे ग़लति साबित करण लाइ को दलील न आहे। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे एमक्यूएम अॻवान फारूक सत्तार जो चवण हो त हुकूमत ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में गवर्नर राज जो फ़ैसिलो दिलि सां नाहे कयो। जेका नज़र ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ते आहे उहा साॻी नज़र सिंध ते बि रखी वञे।
2: पीटीआई केपी में इमरजेंसी ऐं गवर्नर राज खे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी तरफ़ां वकील अली ज़मान दरख़्वास्त दाख़िल कराई। बैरिस्टर गोहर चयो आहे त गवर्नर राज ऐं इमरजेंसी खे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करे छॾियो आहे। उमीद आहे अदालत सूबे में जमहूरियत बहाल कंदी।

0: है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
0: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
2: सुपर वाइट।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13 ए 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301043842।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331-252-5786।
3: जी हा, 3135-5786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
7: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
8: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघरायूं भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331-252-5786
3: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट
4: ऐसा मंजूर कर वो अपोजिशन ठहराव खिलाफ ऐवान में एहतजाज कर नारेबाजी कई के पी में गवर्नर आज की मंजूरी लाए पार्लियामेंट जो गडियल इजलास सुभाने तलब तारिक फजल चौधरी जो आया था पार्लियामेंट जो गडियल इजलास सुभाने सुबह जो 11 वगे थींदो। बिलाल भुट्टो जरदारी के पी में गवर्नर आज जो जिम्मेवार पीटीआई के करार दे छो हुकूमत अपोजिशन के गालू करने की तजवीज भी दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कर बिलाल भुट्टो जरदारी चो था हुकूमत इमरजेंसी वो एटमी बम इस्तेमाल करने का पेरी अपोजिशन से गालू क्यों अपोजिशन के मंझनो पवो तो पीटीआई हुकूमत पा सियासी आपघात हमलो कयो सदर आइन मूजिब के पी में इमरजेंसी ए गवर्नर राज लगायो फैसलो हमेशा लाए ना है हुकूमत अपोजिशन मामले ते वही बीहर गालू कन हालतू बेहतर थी तो वजीर आजम के इमरजेंसी खत्म करने की दरख्वास्त कदस सेहूनी अंसर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है दहशतगर्दी की सूरत में भारत जो ऑपरेशन सिंदूर अज भी जारी है। भारत का पाक फौज हथा तबाह थियल छह जहाज हजम न थी रहा है सभी के मुतहर थी दहशतगर्दी खिलाफ विड़ो पवो। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई हुकूमत का के पी में ख्याल कदम वापस वो मुतालबो कर कौमी असेंबली के खिताब करें महमूद खान चकसई हुकूमत जा कदम गैर आइनी वापस वरता वन बैरिस्टर गोहर हुकूमत जमहूरियत से राताओ हयों हुकूमत 58-2B के बीहर जिंदा किया अवां चूंडल हुकूमत के घर पीड़ो कर समूरा नोटिफिकेशन रद्द क्यों था समूरी पाकिस्तान के गैर फाल कर केपी में इमरजेंसी गवर्नर आज जो फैसलो सोची समझी कयो वियो सुहेल आफरीदी जे वडे वजीर थियण बाद सूरत हाल मुल्की सलामती के खतरे ताई पहुंची वही हुई। कौमी असेंबली में गलाईंदे कानून बारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तरण चयो आहे त बार बार निशानदेही बावजूद केपी हुकूमत गाल न मनी दिफा बारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई हुकूमती दौर में जेको कुछ कयो सब याद आहे केपी में गवर्नर आज खां सवाइ बियो को ऑप्शन न हो। खुदा के वास्ते केपी से गड सिंध से भी नजर रखो पीटीआई वट फैसले के गलत साबित करने लाए को दलील ना है। कौमी असेंबली में गलाईंदे एमकेएम अगवाण फारूक सत्तार हुकूमत केपी में गवर्नर राज जो फैसलो दिल से ना कयो जेका नजर केपी ते आहे सागी सिंध से भी रखी वे। पीटीआई केपी में इमरजेंसी ए गवर्नर राज के पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की तरफा वकील अली जमान दरख्वास्त दाखिल कराई बैरिस्टर गोहर चयो आए त गवर्नर राज इमरजेंसी के पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर उम्मीद है अदालत सूबे में जमहूरियत बहाल कंदी। रूसी घरू वजीर पारां जीएचक्यू जो दौरो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में तरफन लागापन समेत खत्ते की सूरतयाल से गालू ISPR मूजिब फील्ड मार्शल रूस से मुख्तलिफ शोबन के सहकार के हथी डेण वाले समझो वर्जा रूसी घरू वजीर पारां दहशतगर्दी खिलाफ वेड में पाकिस्तान के किरदार की साराह कई। पाकिस्तान अमान व्यापार के हथी डेण खिते में अमन लाय गड़ी कम करते इतफाक कर वरतो उमानी परडेही वजीर बदर बिन हमद के नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात में तरफा लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गालू बिन्हीं अगवाणन जो खिते के अमन लाय सहकार जारी रखने इतफाक नायब वजीर आजम इसहाक डार है त पाकिस्तान अमान विच में लागापा तारीखी दोस्ताना मजबूत बुनियादन से कायम आन। उमानी परडेही वजीर चयो त पाकिस्तान से व्यापार समेत बेन शोबन में सहकार बधायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM Network पर KTN News
2: Brought to you by
3: Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GAFM 88 नेटवर्क. GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
5: अरे न खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिन ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट. उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती. हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल. सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी.
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
8: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी.
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजनि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 03-36-36-879 ऐं 03-12-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252578 6
7: जी हाँ 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

山呢。

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे 4 बजे दी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ए दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों ए थाओं खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
5: मातली ए आसपास जी आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842। امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
7: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
8: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی بڑی 247-41-230
9: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रत अचण सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287 سکون اعتماد صحت مند زندگی ڈاں قدم
10: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
11: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
10: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
11: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
10: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
11: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
10: 0331-252-5786
11: جی ہاں بڑی 231-525-786
10: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک
11: سندھ جو آواز

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4 शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं, और सरहद पार से भी जो दारंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए, और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और बिलखसूस जो पिछले एक साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड, वो अलार्मिंग हद तक मुल्की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
1: केपी में इमरजेंसी गवर्नर आज जो फैसलो सोची सब्जी का सुहेल आफरीदी के वे वजीर थियण बाद सूरत मुल्की सलामती के खतरे तई पहुंची वही हुई। कौमी असेंबली में गलाइंदे कानून बारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तारण है बार बार निशानदेही बावजूद केपी हुकूमत गाल न मनी। सेवा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चाहता पीटीआई हुकूमती दौर में जो कुछ कयो सब याद आए, केपी में गवर्नर राज खां सिवाय बो को ऑप्शन न हो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-1287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हा, 2 2 7 7 86।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल्ह करणी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल्ह करणी आ रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐ सचाई लबन ते मुड़का विखरियल दिलन में आ बेआई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल्ह करणी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल्ह करणी आ।

कराची खां कश्मोर कींझर खां कारूंझर ताईं श्रेणी सिंधवासियुनि खे आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम क़बूल पवे। प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अवां ॿुधी रहिया आहियो GAFM नेटवर्क।

GFM नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि महबूब शख़्सियतनि दिलरुबा दोस्तनि प्रिय प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद।

0: दोस्तों अचो तो बुधू था मेहदी हसन ए नाहिद अख्तर जी खूबसूरत आवाज में ही खूबसूरत गीत बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा से।
1: गवर्नर राज लगान जो फैसलो हमेशा लाइन

0: जी वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गल सा रहो है अब चौहान आया बुधी रहे हो जीए एफएम नेटवर्क दोस्तों प्रोग्राम के फर्दर अगते बधाईदा से अवां जो साथ रहंदो हीअं रखां रात 11 वगे ताईं अवां असांखे कॉल कंदो 03000113488 थोरी देर में अवां जो असां कॉल्स वठ रही आहिनि वक़्तु थी रहियो आहे हिकड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विहंदासीं ॿुधंदा रहो जीए एफएम नेटवर्क
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रत अचण सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि भला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदो कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-879 ऐं 0312-34-01-287
4: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे पूरो थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
5: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होल

0: होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 1308631633।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। तुमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: तो ना
1: हैं मुझसे खसारा पूछने वाले, तुम्हारा नाम न लेकर तुम्हारा पूछने वाले, तेरे तर के ताल्लुक ने बहुत से लोग छीने हैं, तेरे तर के ताल्लुक ने बहुत से लोग छीने हैं, तेरी नस्बत से आते थे हमारा पूछने वाले।

बताओ क्या कहूँ उनको, सबब क्या है जुदाई का। बताओ क्या कहूँ उनको, सबब क्या है जुदाई का, मेरे दर पर खड़े हैं वो दोबारा पूछने वाले, बहुत से लोग हैं मुझसे खसारा पूछने वाले, तुम्हारा नाम न लेकर तुम्हारा पूछने वाले।

जी दोस्तों एक अदर फरमाइश ना भी हुकुम की तामील भी हम पूरी कंदासे उन भी वधंदासे उन वरी कॉल्स भी अटेंड कंदासे प्रोग्राम जो शिकवा शिकायतू हम खोड़ सारी हूं रही कदें चौदा त ब्रेक वधीक आ कदें चौदा तो अवज शायरी शामिल है कदें चौदा त ब्रेक न वठन घुर्जे के दोस्त चौदा त कम्पलीटली वन आवर जो पोएट्री हुए बी गाल हुजन उन आफ्टर वन आवर जो कॉल शामिल कई वन पर खैर सभी जो आराम तजवीजू उ सर अखियन से रखी कर उन मझा जी खूबसूरत शय जुड़ी है खूबसूरत गुलदस्तो बण उन गुलदस्ते की खुशबू वास अवा के वठाने की कोशिश कंदा आई हिं जैसे फरमाइश में भी कमी कोताही थे तो उम्मीद यहां जो माइंड को कदों इन ही गीत के मोहम्मद यूसुफ के गीत के अवा तई पहुंचाने लाए जो नए पैटर्न से नए एकड़े म्यूजिकल बैंड तमाम इंतहाई वायरल है प्यारे सिंगिंग में छाकाण त उस्ताद मोहम्मद यूसुफ के ट्रिब्यूट है ही गीत एक्चुअली मोहम्मद यूसुफ के पैं आवाज में ना है पर उनके ट्रिब्यूट है सो अचो तो इतिहाद बैंड जो ही खूबसूरत आवाज बुधूं प्यार था सदके।

प्रोग्राम दिल जी गाल से कराऊ है अभी चौहान आया वहां बुधी रहा हो जी एफ एम नेटवर्क और दोस्तों जिन दोस्तों असा के हियर न्यूली ट्यून किया है उनके पांजो लाइव कॉलिंग नंबर बताई तो असा लाइव कॉलिंग नंबर आए 03000113488 असा से लाइन से कॉलर मौजूद है कॉल शामिल कदास प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथा खां हेलो मदद कयूं कॉल शामिल कोन कर थी

जी दोस्तों, थोड़ी देर अगर गीत बुधो असा कमी को था माफ जो करें को प्रॉपरली ट्रैक अवां जी मनपसंद चॉइस थे वो असा के प्लेलिस्ट में शामिल नथी सके या असा के न मिली सके उन तहत असा ट्रिब्यूट भी पेश करे छियो से मोहम्मद यूसुफ लीजेंड सिंध जो तमाम वडो नाव आए एक एरा रहयो एक दौर रहयो वक्त रहयो उनन का बाद में असा के मतलब मोहम्मद यूसुफ जड़ा ब्या जे साइन आबदा परवीन आए अड़ा सैयद सुलेमान शाह है उन जड़ा सिंगर अज तई असा के जी भी चौं न मिलिया तो इनमें को वाधारो न हों शक ना है पर हिंसर कुछ नौजवान सुठो तमाम परफॉर्म कर रहा है गाय रहा है कें कें जो नाव खड़ा ये ट्रिब्यूट भी हो उस्ताद के न्यूली म्यूजिक साउंड ते क्वालिटी ते क्वालिटी भी बेहतर हुई मुख्य तो बेहद मजो आयो यकीन अवा के मजो पिणाए होंद।

जी दोस्तों कोशिश कंदा से प्रोग्राम में कॉल शामिल थे अवां सा गाल बोल थे अवां जे दिल जी गाल बुझे अवां सा दिल जी गाल कजे कॉल मौजूद है लाइन ते अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा का